रहेंगे या इसके बोलवन हो और रहेंगे या इसके तो गोल सुना दे ये ले सुना इसमें बोल सुना दे ये मोनी यारो ने मिये नियंबा रहेंगे Yakko ra den ye sotina,